0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे श्यामूल बंदोपाध्याय। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है एक और श्यामा संगीत। कलाकार हैं गार्गी चट्टोपाध्याय।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वाज श्यामूल बंदोपाध्याय। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट गार्गी चट्टोपाध्याय।

0: हिंदुस्तानी भक्ति संगीत कार्यक्रम के तहत अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थी गार्गी चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे सातों दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी भक्ति संगीत।
1: यू आर लिसनिंग टू श्यामा संगीत। आवर आर्टिस्ट वॉज गार्गी चट्टोपाध्याय। वी दस कंक्लूड आवर प्रोग्राम ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स। This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं राग किरवानी और राग पीलू में गिटार वादन. आज के कलाकार हैं पंडित देवाशीष भट्टाचार्य. आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं समर साहा. पंडित देवाशीष भट्टाचार्य अपने गिटार वादन की शुरुआत राग किरवानी से कर रहे हैं.
2: दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक. दिस इवनिंग वी प्रेजेंट अ हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंटल रिसाइटल. लिसन टू अ गिटार रिसाइटल इन राग किरवानी फॉलोड बाय राग पीलू. आवर आर्टिस्ट दिस इवनिंग पंडित देवाशीष भट्टाचार्य, एकम्पानिंग ऑन द तबला समर साहा.

हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग किरवानी में गिटार वादन सुन रहे थे। कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समर साहा। पंडित देवाशीष भट्टाचार्य अपने गिटार वादन का क्रम जारी रखते हुए अब प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग पीलू में गिटार वादन। तो आइए सुनते हैं राग पीलू में गिटार वादन, कलाकार पंडित देवाशीष भट्टाचार्य।

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग पीलू में गिटार वादन सुन रहे थे। आज के कलाकार थे पंडित देवाशीष भट्टाचार्य। आज आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे समर साहा। ये हमारे आकाशवाणी के कोलकाता केंद्र की भेंट थी। रागम चौबीसों घंटे सातों दिन डीटीएच पर उपलब्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You are listening to a guitar recital in Rag Kirwani, followed by Rag Pilu by our artist this evening, Pandit Devashish Bhattacharya, accompanying on the tabla, Samar Saha. This program was recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam, 24/7 anytime Indian music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में लीजिए प्रस्तुत है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी वादन. प्रस्तुत है बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री में आलाप जोड़ झाला. In the program of Hindustani classical music, we present flute recital by Pandit Hari Prasad Chaurasia. First, you will listen Rag Bageshwari, Alap Jod Jhala.

0: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
1: पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग बागेश्री अभी आपने सुना। कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग भैरवी, आलाप के पश्चात मध्य लयगत रूपक ताल में निबद्ध है।
0: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।
1: दैट वॉज राग बागेश्वरी। In continuation of the program, Pandit Hariprasad Chaurasia presents Raag Bhairavi, Aalap and Madhya Laygat set to Rupak Taal.

0: अभी आप सुन रहे थे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया का बांसुरी पर बजाया राग भैरवी। तबले पर संगत किया था पंडित मदन मिश्रा ने। ये आकाशवाणी मुंबई की भेंट थी।
1: ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत।
0: यू आर लिसनिंग द फ्लूट रिसाइटल बाय पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। एकॉम्पनिंग हिम ऑन तबला वॉज पंडित मदन मिश्रा। दिस वॉज कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो मुंबई।
1: दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन।

0: This is Ragam 24/7 DTH India Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है स्वप्नमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी. विलंबित और द्रुतगत तीन तालमनीबद्ध है. तबले पर आपकी संगति की है सुखमय बैनर्जी ने.
2: This is the Ragam channel of All India Radio Delhi. We now present for you a sub recital by Swapnamay Banerjee. Accompaniment on the tabla is provided by Sukhmay Banerjee. Listen to Rag Basant Mukhari, in which you will hear alap followed by the vilambit and rutgat set to Teen Taal.

0: अभी आप स्वर्णमय बैनर्जी का सरोद पर बजाया राग बसंत मुखारी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी सुखमय बैनर्जी ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति।
1: दैट वॉज राग बसंत मुखारी एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द सरोद रिसाइटल प्रेजेंटेड बाय स्वप्नमय बैनर्जी। अकंपनीमेंट ऑन द तबला वॉज प्रोवाइडेड बाय सुखमय बैनर्जी। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम DTH चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सहकारियों द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन। प्रस्तुत है राग केदार। विलंबित गत एक ताल में निबद्ध है, द्रुत गत तीन ताल में निबद्ध है। दिस इज रागम DTH चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। इन द प्रोग्राम ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक वी प्रेजेंट शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी। उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी प्रेजेंट्स राग केदार। विलंबित गत सेट टू एक ताल एंड द्रुत गत सेट टू तीन ताल।

ये थी सुगम धुन। आप सुन रहे थे उस्ताद बिस्मिल्ला खान और सहकारियों द्वारा प्रस्तुत शहनाई वादन। ये आकाशवाणी मुंबई की प्रस्तुति थी। ये है रागम डीटीएच चैनल, हर दिन हर पल भारतीय संगीत। दैट वॉज सुगम धुन। यू वर लिसनिंग टू शहनाई रिसाइटल बाय उस्ताद बिस्मिल्ला खान एंड पार्टी। दिस वॉज अ कॉन्ट्रीब्यूशन बाय ऑल इंडिया रेडियो मुंबई। दिस इज रागम डीटीएच चैनल, एनी टाइम इंडियन म्यूजिक।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत. हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत लीजिए प्रस्तुत है सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद, तदुपरांत जौनपुरी धमार. कलाकार हैं सुमोना गुप्ता. आपके साथ पखवास पर हैं प्रबाल नाथ और हारमोनियम संगी हैं कमलाखा मुखोपाध्याय.
2: This is Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music. This morning we present a Hindustani vocal recital followed by a Hindustani instrumental recital. Listen first to Bhairav Dhrupad followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist is Shumona Gupto. Accompanying our artist on the Pakhavaj is Prabal Nath and on the harmonium is Kamalakho Mukhopadhyay.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप सर्वप्रथम भैरव ध्रुपद तदुपरांत जौनपुरी धमार सुन रहे थे। कलाकार थी सुमोना गुप्ता। आपके साथ पखवास पर संगीत है प्रबालनाथ और हारमोनियम संगीत है कमलाखा मुखोपाध्याय। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए प्रस्तुत है राग अहिरी पर सितार वादन। कलाकार हैं रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर हैं अभिषेक चट्टोपाध्याय।
1: You were listening to Bhairav Dhrupad, followed by Dhamar in Jaunpuri. Our artist was Sumona Gupta. Accompanying our artist on the Pakhavaj was Prabal Nath, and on the harmonium was Komalakho Mukhopadhyay. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the concert, we now present a sitar recital. Listen to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist is Reena Srivastava.

0: हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के तहत अभी आप राग अहिरी पर सितार वादन सुन रहे थे। कलाकार थी रीना श्रीवास्तव। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे अभिषेक चट्टोपाध्याय। ये आकाशवाणी कोलकाता केंद्र की भेंट थी। यह रागम 2400 घंटे 7 दिन उपलब्ध है। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत।
1: You were listening to a sitar recital in the rag Ahiri. Our artist was Reena Srivastava. Accompanying our artist on the tabla was Abhishek Chattopadhyay. This program was earlier recorded and produced in the studios of All India Radio Kolkata for Ragam 24/7 on DTH Anytime Indian Music.

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन DTH अनवरत भारतीय संगीत. आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत गिटार वादन. कलाकार हैं दीपांकर राय चौधरी. इस कार्यक्रम में पहले सुनते हैं राग नट भैरव. तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने.

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी का गिटार पर बजाया राग नट भैरव। आइए सुनते हैं इन्हीं का बजाया गिटार पर राग कीरवानी। तबले पर संगत की है भरत कुमार मिश्र ने।

अभी आप सुन रहे थे दीपांकर राय चौधरी की गिटार पर बई राग मिश्र पहाड़ी धुन। तबले पर संगत की थी भरत कुमार मिश्र ने। ये कार्यक्रम रागम 24 घंटे सातों दिन डीटीएच अनवरत भारतीय संगीत अंतर्गत आप तक पहुंचा आकाशवाणी लखनऊ के सहयोग से।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत. अब आप सुनेंगे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन. कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी. राग है कोमल ऋषभ आसावरी. आप प्रस्तुत कर रहे हैं आलाप और विलंबित गत. विलंबित गत तीन ताल में निबद्ध है. दिस इज रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल. नाउ लिसन टू अ हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी. द रेंडेशन कमेंस विद द राग कोमल ऋषभ आसावरी.

अब आप सुनेंगे राग रागेश्री। आप प्रस्तुत कर रहे हैं रागेश्री में आलाप और दो गतें, जो क्रमशः तीन ताल में निबद्ध हैं। कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। नाउ लिसन टू राग रागेश्री बाय पंडित देवव्रत चौधरी।

आप सुन रहे हैं सितार वादन, कलाकार हैं पंडित देवव्रत चौधरी। यू आर लिसनिंग हिंदुस्तानी सितार रिसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। ये है रागम पर हर पल हर समय भारतीय शास्त्रीय संगीत। इस कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित देवव्रत चौधरी से राग।

अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शैली में सितार वादन। कलाकार थे पंडित देवव्रत चौधरी। हर पल हर समय रागम के लिए ये थी आकाशवाणी के भोपाल केंद्र की भेंट। यू आर लिसनिंग टू हिंदुस्तानी सितार रेसाइटल बाय पंडित देवव्रत चौधरी। दिस प्रोग्राम वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो भोपाल फॉर रागम 24/7 एंड एक्सक्लूसिव इंडियन क्लासिकल म्यूजिक चैनल।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये आकाशवाणी का रागम चैनल है. प्रस्तुत है उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी. विलंबित ख्याल एक ताल में निबद्ध है. बोल हैं काज मोरे बन आवे और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है. बोल हैं नैना तिहारे मन भावे. तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने.
2: दिस इज द रागम चैनल ऑफ ऑल इंडिया रेडियो. वी नाउ प्रेजेंट अ वोकल रिसाइटल बाय उस्ताद गुलाम सादिक खान. He begins the recital with a rendition in Raag Bairagi. The Vilambit Khayal is set to Ek Taal. The words are Kaaj Mure Ban Aave. The Drut is set to Teen Taal. The words are Naina Tihare Man Bhave. He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed.

0: अभी आप उस्ताद गुलाम सादिक खां का गाया राग बैरागी सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। और लीजिए अब सुनिए इनका गाया राग मेघ। मध्य लय झपताल में निबद्ध है, बोल हैं गर्जे घटा घन और द्रुत तीन ताल में निबद्ध है, बोल हैं कासे न कहिए सजनी। तबले पर आपकी संगति की है नवाब अली खान ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने।
1: यू आर लिसनिंग टू अ रेंडिशन इन राग भैरवी बाय उस्ताद गुलाम सादिक खान। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय नवाब अली खान एंड ऑन द हारमोनियम बाय सज्जाद अहमद। ही नाउ प्रेजेंट्स राग मेघ। द मीडियम टेम्पो और मध्य लय इज सेट टू झपताल। द वर्ड्स आर गर्जे घटा घन एंड द फास्ट टेम्पो और द्रुत लय इज सेट टू तीन ताल। द वर्ड्स आर कासे न कहिए सजनी। He is accompanied on the tabla by Nawab Ali Khan and on the harmonium by Sajjad Ahmed.

0: गुलाम सादिक खां का गाया राग मेघ सुन रहे थे। तबले पर आपकी संगति की थी नवाब अली खां ने और हारमोनियम पर सज्जाद अहमद ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली की प्रस्तुति थी।
1: यू आर लिसनिंग टू अ परफॉर्मेंस इन राग मेघ बाय उस्ताद गुलाम सादिक खां। ही वाज अकंपनीड ऑन द तबला बाय नवाब अली खां एंड ऑन द हारमोनियम बाय सज्जाद अहमद। दिस प्रोग्राम वाज प्रेजेंटेड बाय ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली।

0: This is Ragam 24/7 DTH Indian Classical Music Channel.
1: ये है रागम 24 घंटे सातों दिन उपलब्ध हिंदुस्तानी भक्ति संगीत. श्रोताओं, भक्ति संगीत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे कुछ भजन और श्यामा संगीत. आज के कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य, नवनीता बसु, विश्वनाथ चंदो, सौरव मायती और नमिता भट्टाचार्य. आज के भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम का प्रारंभ हम भजन से करने जा रहे हैं. कलाकार हैं नंदिनी भट्टाचार्य. तो ये सुनते हैं नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन.

0: अभी आप नंदिनी भट्टाचार्य से ये भजन सुन रहे थे। आइए आप सुनवाते हैं एक और भजन। कलाकार हैं नवनीता बासु। तो लीजिए सुनिए नवनीता बासु का गाया ये भजन।
1: You were listening to Meera and Kabir Bhajans. Our artist was Nandini Bhattacharya. This is Ragam 24/7 on DTH, anytime Indian music. Listen now to a Kabir Bhajan by our artist Nabonita Basu.

0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हिंदुस्तानी भक्ति संगीत का कार्यक्रम। भक्ति संगीत के इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं श्यामा संगीत। इस श्यामा संगीत के गायक कलाकार हैं विश्वनाथ चंदो। तो ये सुनते हैं विश्वनाथ चंदो से श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू कबीर भजन बाय आवर आर्टिस्ट नोबोनीता बासु। दिस इज रागम 24/7 on DTH, anytime Indian music. Continuing the program, we now present Shyama Sangeet. Listen to Shyama Sangeet. Our artist is Bishwanath Chando.

0: अभी आप श्यामा संगीत सुन रहे थे। कलाकार थे विश्वनाथ चंदो। श्यामा संगीत का ये क्रम जारी रखते हुए अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं सौरव मायती का गाया हुआ ये श्यामा संगीत।
1: यू वर लिसनिंग टू श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट विश्वनाथ चंदो। दिस इज रागम 24/7 ऑन DTH एनी टाइम इंडियन म्यूजिक। वी नाउ प्रेजेंट श्यामा संगीत बाय आवर आर्टिस्ट सौरव मायती।